everyone went to Sivaji's, and Sivaji's told that, well, I cannot do anything now, just you need to go and ask to the Vishnu, because I gave the blessing to him, and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is, he need to go and worship. So Vishnu, they went, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So, without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands years that passed away. So but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So ye Puran hai ki Shiva Puran mein jo aata hai ki Tulasi Mata Saligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए. पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई. इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं. ये शिव पुराण का कहानी है. शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये तुलसी ने जो शरीर देह त्याग किया था वो गंडकी था. गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है. शालिग्राम वही मिलता है. दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह. तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं. कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में. तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं. तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि तो वहां पे भी ऐसी कथा है. जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा. वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था. ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें. तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए. और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया. और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ. शिव जी ने बताया और सारे देवगण विष्णु के पास में गए. विष्णु ने हाँ कह दिया. उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया. जय बोले विष्णु भगवान की जय. सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन. दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक इन विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर. एंड ही वेंट एंड वेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. My husband is used to. And then before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything. And
She did the arati for her husband.

and everything done, and that Vishnu did his notorious things, he performs that, and the Brinda overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Ras Lila with Brinda in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's. That went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there. And Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy. And she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only the Vishnu need to remain as like the Pasad, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says, she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted. You don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda cursed, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you, you better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब ब्रिंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में ब्रिंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब ब्रिंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में ब्रिंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन अ स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर everywhere we use the kush grass. As we mentioned earlier session is kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly she calls the grass bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye is duniya mein people ko tulasi ko saligram ko aur kya hai ki hum जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी बिस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree.
So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food,

Google that. Why people does the banyan tree wedding? That's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा, सर्वाधिक लोकप्रिय, जनहितकारी, सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन, हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए, जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो, व्हेन यू डू हवन, देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, पीपल वुड्स, तुलसी वुड्स, कुश ग्रास, तुलसी वुड। सो व्हेन यू डेथ ऑल्सो इन सिमेट्री, इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल, कुश, तुलसी, इट्स एज लाइक it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur tulasi ke lakdi saath mein rakh lo aur chita mein koi bhi, kisi ka bhi chita, पीपल का लकड़ी से, तुलसी का लकड़ी से, उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समिदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट, इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड, सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री, द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें, सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर, हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटीफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटीफुल। सो इट्स एज नो मैटर व्हाट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड, बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल। That's why our saint and Rishi Munis, they add that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that, if you see that in the kalasa there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel that's a tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से, पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है, और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए, आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था,

0: पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि बैसाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह पीपल शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got, we finish many chapters today, so which is important also. We'll not have time, some other time, to read in detail. There is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
1: भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय। श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विष्णु गुरु महामंगलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर

0: Bombole, Sri Sri Dipnara, Bhagwane ki jai, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva ki jai, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwane ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhansri Swami Maheshwarananji Gurudeva ki jai.
1: Jai Bole Bhole Baba ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Sustani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, to see Bhapuran, हमारे लिए और सारे वेदादी वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है, तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है. संदेह ही

क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है, तो इसलिए संशय आत्मा विनश्यति ही। तो किसने बोला है? तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्मा द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजन इट? सो हनुमान इज ए भक्त ऑफ राम, वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती। बट इन सिमिलरली अर्जुन ऑल्सो द वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड भक्त ऑल्सो द कृष्ण, सो वाई वी कैनॉट सेलिब्रेट अर्जुन जयंती? बिकॉज हनुमान इज अ डिवोटेड पर्सन, ही नेवर डाउट, सो ही ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, देर वॉज नो डाउट फॉर हिम, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, देर इज ऑलवेज ही बिलीव एंड ट्रस्ट। So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call it Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee, but he always doubt. He's asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha ishyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 adhyay ke 66 shlok mein jo likha hai wo bhi kya hai ki sarva dharman matlab ki koi bhi cheez aapka जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज, इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर। इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो। And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavad jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, Yavad jivet sukham jivet. As long as you live happily, enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee means like nectar, enjoy your life. But that Charvaka theory is that said, but in spirituality it says like, there is a great nectar, if you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So you can enjoy with divine, the divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron, and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke Jalandhar
जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया। पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया। इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है। आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड़ दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था। तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा। जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के। अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए। शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

भी बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए। चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं। और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है। आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी। आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे, तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर, समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है। पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण। कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो। जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

0: So Tulasi is worshipped now. So what about some other Puran? So because we are daily using Tulasi, and all the Saiva, all the Vaishnava, all people, they know the Tulasi, the basil, herbs nowadays. Ayurveda accept, and they are making now not only the mala, so they are making lots of Tulasi's tea and Tulasi's powder and Tulasi's some herbs and Tulasi's tablets. So that's why Tulasi is quite a bit concerned nowadays. So that's why we'd like to explain some other Puran's story as well. So in Swastani Puran, in Swastani Bratakatha, so have you heard the Swastani? In Swastani Puran, it says like, so Tulasi's origination, it talks about Tulasi. There is the story is different, but the nature is same. There was a Danava, demons, and his name is Jalandhar. So Jalandhar was a brave, brave demon. And Jalandhar's wife is Brinda. And Brinda was also a beautiful woman. He is also maintaining Pati Dharma, Pati Vrata. So Pati Vrata or Pati Dharma. So for man, this is Ek Nari Brahmachari. So we were married, he's also Brahmachari, but with only one woman. So woman also, she is also Brahmacharini, just for one husband. So that is, so which is very powerful, as we mentioned before. So Brinda also maintaining that Brahmacharini. And also Jalandhar was also, there was a very brave. But he was the demon, he always saw the demon nature. He used to go God's place, houses, and destroy the temples, and he is torturing the Mahatma, Rishi Munis, and doing so many unjust things, violence. So there was, the time was a little bit difficult. And everyone went to Shivaji, and Shivaji told that, well, I cannot do anything now, just you need to go and ask to the Vishnu. Because I gave the blessing to him, and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is he need to go and worship. So Vishnu, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands of years that passed away. So but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So ye Puran hai ki si Puran mein jo aata hai ki Tulasi Mata Saligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए, पाषाण विष्णु क्या है कि वो सालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं, ये शिव पुराण का कहानी है। शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये तुलसी ने जो शरीर देह त्याग किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, सालिग्राम वही मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली सालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्यचित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्तानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कथा है। जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है, बैठक हो गया। और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन सोस्तानी पुराण इट सेज लाइक एंड विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड वेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful, and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate, and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint, he should not be unconscious, he my husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, he performs that, and the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness, that's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi saligram. And also the Brinda course, you are like the tree, like you didn't moved, so that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth, so that you cannot move anywhere else, because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you, you better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया, उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि हे विष्णु छलकारी, तू जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े, तो उस टाइम से पत्थर सालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था, तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी, कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो Vishnu four cursings there. First thing is, better you remain a stone. And then second, tree. And third one is grass. So that's why grass, the grass is Kush grass. The grass, Kush grass is also taken as a Vishnu's incarnation. And that's why in prayer, everywhere, we use the Kush grass. As we mentioned earlier session is, Kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is Tulasi. Tulasi hokar rana pade, Kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye is duniya mein people ko, Tulasi ko, saligram ko, aur kya hai ki hum जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप. एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because of the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है. जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है. दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है. जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है. पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड. People woods, Tulasi woods, Kush grass, Tulasi wood. So when you death also in symmetry, if your body is symmetry cremate with the wood of the people, Kush, Tulasi, it says like it will be purified your body. And spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit Tulasi, little bit that Panchapallav is. पीपल मरने के समय में क्या है कि थोड़ी सी भी पीपल के पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो, और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुछ घास रख के उसको चिता जो चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है. तो वो तो स्पिरिचुअली है. इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है. इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है. जय बोलिए पीपल भगवान की जय. सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन. You go and if you have the measurement of the oxygen that has been done many times in Australia also did. So if you take that level of oxygen near close to the peepal tree or basil tree, the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always tulsi is beautiful, and then people is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulsi kush grass is wonderful. That's why our saint and rishi munis, they ate that every prayer you need to have leaf of the tulsi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay, but if we have that one, that's a wonderful perfect prayer. So in the kalas also, that we put that, if you see that in the kalas there is a seven leaf, if we don't find the seven, we'll put the five. So in the five leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world, and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia, and some other country, Canada. Nowadays, the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can see and feel the that's a tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye peepal ke rukh mein dhyan karne se, peepal ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashwasan mein aashwasan to yahi hai. Aur peepal ke kya hai, peepal mein Brahma Vishnu Mahesh ka bhi vas hai. इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया. कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में. वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए, आकर मेडिटेशन किया था. तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था. इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिस से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है. इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है, तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ. तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है. जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे, तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो, दूर हो जाता है, और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है. इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं. जय बोलिए पीपल भगवान की. सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to graha pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine, but still you will get the same benefit, that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant, and that's also dharma, obviously. And definitely, you will be protected. So that's why the everything is an everything that has got science, and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people, Bhagwan ki jai. Now we'll have one bhajan, and we'll go continuously. We finished. Many chapters today, so which is important also. We will not have time some other time to read in detail. There is a long verses, and also it need to be I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
1: भगवान की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय श्री माधव कृष्ण भगवान की जय विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर

0: Омбале, Срі Срі Діп Нарем Бхагаване Кидже, Срі Срі Дева Пуриша Махадева Кидже, Срі Срі Мадав Кришна Бхагаване Кидже, Вишва Гуру Махамандалешвар Парамхасри Свами Махишварананджи Гуру Дева Кидже.
1: Jai Bole Bhole Baba Ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Swastani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है, तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है। वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए। फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रविड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I mean confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha isyami maha sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a charvak siddhanta, the charvak theory. The charvak theory says like, yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak's theory is that said. But in spirituality, it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron, and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, askeli aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी, और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के. अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

0: भगवान की
1: जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर इन दिस हॉल इन आवर ब्यूटिफुल आश्रम एंड ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, वेलकम। फॉर सम वन ऑफ यू इज गुड मॉर्निंग एंड फॉर सम वन इज गुड इवनिंग एंड सम वन हैव लंच। So best is to say Hari Om. Welcome. Today will be the meditation on chakras. As a glimpse of the chakras, we always speak about chakras and body in detail. If you would like to know more in detail, then of course you should read this, our chakra book, Hidden Powers in Humans. But I will tell only the glimpse of it.

देवपुरी स महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति ही शांति शांति ही।

जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसतत तीरत है।

0: सुनो जी,
1: सुना जी।
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय,
1: जय
0: श्री सतगुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलक पुरुष महादेव की जय। श्री शिवानंद जी महाराज।

बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी महादेव की सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलखपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय।

होली श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वर

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।